0: की। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की। अलकपुर जी महादेव की जय। 11 टाइम्स residing the Om.
1: 11-szer Om lesz.
0: There are different centers.
1: Vannak különböző központok.

दीप नारायण भगवान की, देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की अलख

गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सतगुरुतम नमाम्यम ओम शांति शांति शांति। अलकपुरी जी महादेव की, देवादि देव देवेश्वर महादेव की, पूज्य भगवान दीप नारायण महाप्रभु की, हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन भारत माता की। ब्लेसिड सेल्फ स्पिरिचुअल सीकर्स भक्तास डियर वंस राउंड द वर्ल्ड दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम होली लैंड भारत जार्डन राजस्थान पाली फ्रॉम द गुरुकुल। गुरुकुल मीन्स दैट एजुकेशन सेंटर वेयर द मास्टर द गुरुदेव इज गिविंग द नॉलेज। द स्कूल्स द कॉलेज एजुकेशन सेंटर्स ऑल बिगेन विद द ऋषिज। There was no schools in the whole world. It was only taught by the great rishis. And the first university in the world, where was it? Pehli university kahan thi sansar mein? Takshila. तक्षशिला कौन से देश में था? भारत में। फर्स्ट यूनिवर्सिटी वॉज इन इंडिया तक्षशिला। मैनी मैनी थिंग्स सो ओके लेट्स गो फर्दर। इन अवर गुरुकुल ओम श्री विश्वदीप गुरुकुल वेयर द Students are studying from the nursery school, primary school, middle school, high school and college. In this area of Rajasthan, we have one project and many of you know, it's called Gyan Putra. हम अवर गुरुकुल adopts द स्टूडेंट्स द चिल्ड्रन एज ए मानस पुत्र। एक तो मानस पुत्र होता है जिसको हम हमारी पुत्र के समान आदर करते हैं प्यार करते हैं समझते हैं और वो ही चाहे आप मानस पुत्र कहो या ज्ञान पुत्र क्योंकि फादर का बाप का माँ बाप का फर्ज होता है कि संतान को शिक्षा दें बिकॉज द पेरेंट्स आर दे हु गिव्स द एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंडियन एजुकेशन the time the school begins from 1st of July. So now our students are

0: coming. But dear ones, you can see many of our Jnanputra, our students in our hostel still coming, and you see them in the Pitambar dress, Pitambar like gold, and Bhagavan Krishna used to have Pitambar. And this Pitambar is a color of the flame of the fire. So the Vidyarthi, they are studying, they should not do any wrong things. They are sitting in the fire in this dress, and this dress will not let come in your body and in your mind negative things. So this is a very ancient uniform for the brahmachari, yani vidyarthi, yani student. They have nothing to do except study. Those who studies, their fruits of their study will come in the future. And the future you will be so happy that you had an education which is a cultural traditions, ethics, morals, and spiritual education. Indian culture, Indian tradition, Indian education from the ancient time was leading the world into the peace and divine. In the Indian education system, there is no aggressivities. They were not aggressive. So, in our Gurukul, we have a different education, not this modern education where they are only want to work and earn money, earn money, earn money. It is very funny to earn that only money. So, हमें तो ज्ञानार्जन करना है, पैसे की बात नहीं करनी है, हम पढ़ेंगे, पैसे कमाएंगे, ये भाव नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों के अंदर, क्योंकि वो पैसे जो हैं, जो तुम सोचते हो, वो तुम्हारी विद्या के अंदर हैं, और वो पैसे इतने तुम्हारे मस्तिष्क रूपी बैंक है ये, इस बैंक के अंदर में जमा हो जाता है और हाथ में से तो रुपये चोरी करके ले जाए, घर में रुपये बड़े चोरी करके ले जाए, लेकिन जो मस्तिष्क के अंदर ज्ञान रूपी धन जो है वो कोई नहीं ले जा सकता है. इसीलिए विद्यार्थी का एक ही संकल्प होता है कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, बड़ा होकर के मेरे माता पिता, मेरी समाज और मेरा गांव, मेरा देश और सब पूरे विश्व को शांति का संदेश दूंगा. बस तो लक्ष्मी, पैसे तो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा. वो कहना नहीं है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए. अगर तुम्हारा अध्ययन इतना अच्छा है तो ये 5 लाख की जगह आपको 15 लाख रुपए देंगे कि लेकिन हमारी कंपनी में काम करो. ले ओ, एक महीना रहा 15 लाख, अपाओ तो थैला में उठी जाए कोई नहीं. 15 लाख रुपए उठा सकते हैं हम? अरे बहुत. तो वो मस्तिष्क में नहीं उठता है. 15 करोड़ तो बाहर है कि तुम्हारे सिर पे उठा नहीं सकते हो, लेकिन वो 500 करोड़ तुम्हारे मस्तिष्क की रूपी बैंक के अंदर में वो वहाँ हो जाएगा जमा, और चाहिएगा जितना ही लेते जाओ. और वो पैसे जो हैं, जो हमारे मस्तिष्क में हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होता है. जैसे कि कुएं के अंदर पानी का स्रोत है, कितना ही पानी निकालो वो तो पानी अच्छा ताजा पानी आता ही रहेगा आता ही रहेगा। तो ज्ञान जिसने सीखा है गुरुकुल के अंदर भारत की संस्कृति के अनुसार और भारत की विद्या ऋषि मुनियों के अनुसार हम करेंगे तो मालो माल है। सो द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कल्चर द लैंग्वेज the first language what we call is sanskrit sanskrit is the mother of all the languages around the world maybe 2-3 not everywhere there is the words of the sanskrit language in many countries and also the culture goes from the bharat All these many countries like Europe and there, they were all under the glaciers. They were living here near the Himalaya and near this Indo Valley. Of course, Australia was different and there, but in Australia also were the South Indians, which we call the Aborigines. So, Aborigines ke andar वो उनके अंदर वो मिलता है जैन्स कि वो भारत का है साउथ इंडिया का है। तो कहा है कि सबसे पहला मानव की उत्पत्ति हुई है तिब्बत में और तिब्बत का अर्थ वो है कि जो जहां पर वेयर देयर इज माउंट कैलाश और कैलाश के अंदर कौन सा मनुष्य पहला पैदा हुआ स्वयंभू शिव। आगे वापस वहीं के नहीं इसलिए हमारा देश इतना है कि उसको कोई छोड़ने की इच्छा नहीं करते हैं सब कुछ है अपने देश के अंदर में और ये देश जो है इनका एक एक कण कण मिट्टी के अंदर में देवी देवताओं का वास है। चंदन है मेरे देश की मिट्टी तपोभूमि हर ग्राम है है? हर बाला है देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है फिर क्या काम है वहां तो आराम है वहां आराम नहीं है। सो मैं अब आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट इन अवर गुरुकुल अवर ज्ञानपुत्र इज हियर दे आर कमिंग And we are welcoming them, and you are most welcome to help for the education. Thank you very much. And now, I would like to give the words to our Mahamandaleshwar, Sri Gyaneshwar Puri Ji Maharaj. Gyaneshwar Puri, Gyanesh, Naam Gyan aur Ishwar, do mil jaye to kya chahiye? और ज्ञान नहीं और ईश्वर मिल जाए तो भी वो डबके क्यों आया डकूने थू है। तो ईश्वर और ज्ञान दोनों का मिलन होता है तब आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार ही हो गया समझिए। तो नाउ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी एंड इन संस्कृत इन एंड इन क्रोएशियन चार लैंग्वेज एट वंस स्पीक्स वही मां मंडलेश्वर बन सकता है बेटा है? फोर लैंग्वेज हिंदी संस्कृत इंग्लिश क्रोएशियन एंड मे बी समवन मोर। सो हमारे ज्ञान पुत्रों को ही विल इंट्रोड्यूस अवर ज्ञान पुत्रास एंड अवर हमारा ब्रह्मचारीज ऑफ दिस आश्रम। सो ज्ञानेश्वर जी आप बच्चों को गिव द चिल्ड्रन दैट काइंड ऑफ सजेशन एंड इंस्ट्रक्शंस दैट दे गेट इंस्पिरेशन टू स्टडी प्रॉपरली। बैठो सदीप नारायण भगवान की
1: जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। हिंदू धर्म सम्राट स्मर कृष्ण भगवान की जय। विश्व गुरु महामलेश्वर परम सम जी सत्य गुरु देव की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम शांति शांति शांति। As you all know, our Sri Vishwadip Gurukul is a school for which for the last, let's say, 20 years is educating the children. Some of them you can see here. it was a Swamiji's project which our dear Vishwaguruji started long back, because education in a country which so huge population like India, it's very tricky. The system of Gurukuls, which was used from the ancient times of rishis, were still active in the beginning of 19th century, but with the coming of British to consolidate their power, they slowly dismantled this Gurukul system and started the English-based system. But also not for everybody, only for selected people and so on. So the story, what I'm telling you, is from the end of 19th century. And the first school and actually university was actually founded in 1885, so which is quite late, in Bombay and so on. So this kind of school, which has very limited approach, left India quite, uneducated. And there were many schools, many children, many villages without any school or any kind of education. We know in Europe we have different system of numbers. Croatia has 5 million people altogether, which is completely, when we put in Indian terms, this is approximately one city. So India has at the moment 1.5 billion people. We invest, we cannot actually comprehend that it's a really huge number. So it means...
0: And Croatia have 50 lakh. Sorry.
1: So we cannot comprehend these numbers that in one village like Jadan, they can be at least 5 to 10,000 students. In the area of Marwar Junction, where our ashram is situated, there can be at least 50,000-60,000, if not more, children who are studying. So now, the problem is how to give education to all these children, because education takes money. Education requires money, education requires books, and so on. So, there are many, of course, the government is doing their best, and there are many NGOs, there are many societies which are helping, and one of societies which Vishwaguruji formed is under the name of Gyanputra, which basically means the sons of the knowledge. So these people, these children, and the families from whom these children belong, they got free education, free books, free many things. Now, it's not a question of only education, because nowadays in our Western-based education, because of so much subjects we have to study, is actually the moral and thinking that is actually removed. Because to teach morality, it's actually the subject which is the base of all education, because first we have education from our parents. But now the parents go to work when you are 3-4 months old and you go to some kindergarten. So In this Gurukul, Swamiji is trying.

चार रोटी आप लेते हैं, ठीक है, सुबह दो शाम को दो, ठीक है, मांगे चलो पांच रहते, छह लेते, तो छह महीना में कितना दिन होगा, 180 दिन। 180 दिन में पांच रोटी एक दिन का हो गया कितना, 900 रोटी। तो ठीक है, आज सुबह हम बना देंगे भंडारा, 900 रोटी सबको खानी है, फिर 6 महीने आप फ्री हो गए खाने से, संभव है? इतनी मामूली चीज है, अब क्या है, 900 रोटी खा लीजिए, क्या है, कोई खास नहीं है, 6 महीना का आपकी भूख नहीं लगेगी, ऐसे नहीं चलता है ना। तो अगर ऐसे नहीं चाहते, आप क्या सोच रहे कि एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरी 365 दिन की पढ़ाई कर सकते, पूरी 6 महीना की पढ़ाई कर सकते एक रात में, वो एक रात भी नहीं, 2 घंटे में। अब यहां से रवाना होकर के 9 बजे बैठेंगे पढ़ाई करने में, 11 बजे समाप्त, सुबह एग्जाम दे देंगे और एकदम 100% मार्क्स आएंगे, संभव है या नहीं है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो पढ़ना होता है रोज, डेली। तो पढ़ाई टुकड़ों में होता है, जैसे खाना टुकड़ों में खाते हैं, हर दिन 5 रोटी खा सकते, कोई टेंशन नहीं, 10 रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन 900 रोटी खा नहीं सकते। तो वैसे ही रोज 900 पेज थोड़ी पढ़ सकते। हमारे पास जयपुर में भी बच्चे आते ओपन स्टडी करते, 3 दिन में 800 पेज की किताब कैसे पढ़ेंगे? इसलिए जो स्टडी कर रहे हैं, अगर डेली हर दिन अगर आप मांग के चलो 1 घंटा पढ़ाई होगा, तो 6 महीना कितना हो गया घंटा, 180 तो हो गया, नहीं हुआ तो 180 घंटा आप एक दिन में कैसे जमा दोगे? तो इसलिए जो पढ़ाई करनी है वो टुकड़ों में करते रहना। अगर डेली 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करते, 1 घंटा, कोई चमत्कारी कारण से 2 घंटा पढ़ेंगे, पता नहीं क्या होगा कि अब 3 घंटा भी पढ़ सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। तो आपकी मार्क्स जो आएंगे, आपकी कोई ट्यूशन व्यूशन की जरूरत नहीं होगी, आपकी जो IAS IPS बनना है सब बन सकते हैं, लेकिन पढ़ाई अगर ऐसे टुकड़ों में करते रहेंगे, अगर एक साथ में कोशिश करें तो क्या होगा, असंभव। इसलिए आपकी यहां आश्रम में रहते, यहां कोई घर की टेंशन है ही नहीं कि कोई माँ बाप कोई काम बताते नहीं, तो आपका क्या काम होगा, पढ़ाई का। इसलिए माता पिता ने आपको यहां भेजा पढ़ाई करने के लिए, और आप यहां क्या करते, मजे ले रहे, सोते रहते, मोबाइल में मूवी देखते, यूट्यूब फेसबुक सब कुछ होता है ना, क्यों? जब पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो, जब तक हम हमारे गुरुजी आ है तब तक स्कूल चलेगा, और गुरुजी को कैसे खुश कर सकते, कम से कम कोई तो मार्क्स आए, अगर मार्क्स आएंगे तो कौन, हमारे गुरुदेव भी खुश होंगे और कहा माता पिता खुश नहीं होंगे, अरे मेरा बेटा 95% आ गया, अभी है कोई यहां 95% के, 100% के, 80? इसलिए ये नहीं होता है कि हम पढ़ाई करते अचानक एग्जाम से 1-2-3 दिन पहले, बस एग्जाम आ रहे हैं और एग्जाम में पढ़ाई करना है। अब आप क्या कर सकते हैं, कल तो गुरु पूर्णिमा थी, तो आज से संकल्प ले लो कि आज से मैं पढ़ाई रोज करूंगा और करते रहूंगा, पढ़ाई की अंत कभी होगी नहीं, पढ़ाई तो कुछ भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। सो नॉट ओनली दैट वी हैव ज्ञानपुत्र प्रोग्राम हियर,
We have also our, with the blessings of our Gurudev, we have yoga programs here. And we have many our students from West who are coming and who are studying, some for the longer times, for some for the shorter time. And this is just that to see that learning never ends. And learning comprises also of the physical part, which we are trying to do here with the yoga, spiritual part with Swamiji's teachings of Ramayana, Mahabharata, and other Upanishads. So definitely, we are open university, we are open school. Of course, it's very difficult for many of us to get a visa, but still it's possible. So on this occasion of Guru Purnima, I would like to thank to our dear Gurudev, Vishwaguruji, Vishwaguru Swami Maheshwaran Puriji Maharaj, who gave us this opportunity, who gave us this ashram and this possibility to study Indian culture, to study the yoga, and to study old ancient traditions. With these words, I would like to finish. And I would still like to thank to all of you who came. I would like to thank to all of you who are donating and who wants to donate either by your work and so on. Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pasyantu ma kaschidukhavah.

Good. Thank you. Thank you, and may honyo. Thank you. And you see the all Vidyarthis and the life throughout the whole world. Right? Now, only the our Gurukul ke bachche jo hai, turn to the camera side. Muh dekho, dusre log nahi. All the Vidyarthi turn to the... Don't go close to the... Phir chela nahi dikhega, beta. Tu idhar se khada ho ja. Bas beta, yahi khade ho ke de. Ya, nazdik aa ja, bas. Okay, we will see if when is... देवेश्वर महादेव की जय अलकपुरी जी महादेव की जय हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की ओ

मैं सब मेरी तरफ झुक आज देख लो, इस कैमरा में देखो, दिख रहे हो तुम लोग? तुम दिख रहे हो? पीछे ये खड़े हैं, बैठ जाओ बस, थैंक यू। सो टुमारो वी विल अगेन हैव द वेबकास्ट ऑन अदर

कबन प्रभु दीप निरंजन सब दुख। श्री दीप नारायण भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। हरिओम।

0: चरण में अरस
1: तीरथ है वो वेद पुराण में गाजे।
0: Siddhi Pnayam Bhagavan Ki Jai, Sri Vishwa Gundeshwar Paramaswami Ashanti Gurudeva Ki Jai,
1: Satya Sanatan Dharma Ki Jai.

जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। Anybody wants to sing?

से आग पूरी समाधि की जय। देवेश वर्मा देव की जय। श्री दीपनारायण भगवान की जय। हिरण दास श्री स्वामी माला कृष्ण भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडल।

ओम बोले सुदीप नारायण भगवान की जय। विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।